हम आकाशवर अल्लाह ओट्टर ओशुंगस्फलुवा रसकलांगे एकलांगे मारुवेफावा तकेतिन दिरे तकेति नेरुवा रसकलांगे अदि दिरे तकेतिन मारुवेफावा तकेति नेरुवा रसकलांगे ऐ अल्लाह फहे त्यबा मीहुं ईमान कमुं इक्किबावे गन्ननी खुम फदेकुं हिये।